0: जिस्ट डाक्टर जिल्लामा पहिलो अत्याधुनिक रंगीन 5D मेसिन गर्भवती को एनमली स्कैन स्थल तथा शरीर को जुनसुकै भाग में रहकर गाँथागुटी को स्कैन र थायराइड स्कैन
1: भिडियो एक्सरे सेवा
0: इको सेवा हरेक दिन बिहान र बेलुका
1: ल्याब सेवा सबै किसिमका जाँच गरिने व्यवस्था भएको
0: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्राली धादिङ बेसीद्वारा जनहित में जारी सन्देश
2: सरकारी शुल्क में निजी अस्पताल में उपचार काठमांडू को वसुंधरा स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केडीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस् 24 घंटा आकस्मिक सेवा ओपीडी सेवा शल्यक्रिया सेवा साथै ल्याब एक्सरे अल्ट्रासाउंड इको इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् केडीसी जनरल अस्पताल संपर्क नंबर 01-4985-910 01-4985-911 तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता

0: ढुक्क हूँ और वो माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: ढुक्क हूँ और वो माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊँ।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: ढुक्क हूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: extreme energy drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज

0: गहूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

हे कुमार जी, हजुर का मुखारविन्दु बाट धेरै कुरा सुन्ने अवसर पर प्रभु तीस पछि का कुरा के भए? संहारकर्ता श्री महादेव को हालत कस्तो भयो? सती देवीले कसका गर्भमा बास लिए? श्री महादेव र पार्वती को विवाह कसरी भयो? आदि कुरा जान्न निकै उत्सुक छु प्रभु, आज्ञा हो।